इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन
2: धड़कन। वायरल है तभी व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

0: कौन आया?
1: What's up कश्मीर?
2: Assalamualaikum, adab and a warm welcome to all of you. दोस्तों हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM और लो हाजिर है आरजे ज्यूस लेकर शो

और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो 90.4 FM जी हां, आप सुन रहे हैं नॉर्थ कश्मीर का पहला नाम रेडियो स्टेशन रेडियो 90.4 FM। मैं हूं जॉक्स, मजेदार शो हुआ सब दोपहर के 12 बजे तक। आई एम हियर इन द स्टूडियो विद द एवरी देसी बीट दैट विल बी प्लेड। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाएं, 8899904904 इज द नंबर। साथ ही याद रखिए, फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना अपने रेडियो चनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चनार 90.4 FM से धड़काते रहो।

पेश है गरज बरस की भी संभावना है। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। अभी के लिए यूवी इंडेक्स मॉडरेट पर 63% है। ह्यूमिडिटी 0 किलोमीटर पर आवर। विंड स्पीड विजिबिलिटी 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:29 पर। आज का सनसेट होगा 7:28 पर। ना गुमशुदा शुन गाचन के बल्कि हजरी शे दिन हमें आपकी मैसेज का इंतजार रहता है। 8888-9904904 इस द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। हर दिल को धड़काने वाली हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM मेरी जान जागजीस के साथ स्टे एक्टिव।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: दोस्तों, रेडियो चुनौर की हॉट फ्रीक्वेंसी पर जो वायरल होता है वो सब पर आ ही जाता है। सेगमेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप, जहां पर वायरल चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बेटा साई कहते ज्ञानी, लोगों ने भी ये बात है मानी, वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, एक रिसर्च हमें बताती है, जो रहा वायरल रिसर्च, ये जताती है कि दुनिया अपना कलर खो रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे नेचर ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, नेचर नहीं बल्कि इंसान कर रहे हैं दुनिया को ग्रे स्केल। अब कलर्स कैसे गायब हो रहे हैं? चीजें जो हम खरीदते हैं, घर जो हम बनाते हैं, गाड़ियां जो हम चलाते हैं, बिल्डिंग्स जो डिजाइन की जाती है, एवरीथिंग इज एस्थेटिक के नाम पे ब्लैक एंड व्हाइट। ये ग्रे स्केल कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस दुनिया से रंग छीन रहा है। अब ये मैं नहीं कहता, साइंस म्यूजियम ग्रुप जिन्होंने एनालाइज किया 7083 चीजों को एवरीडे, अगर हम देखें तो उनका कहना है कि मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स जो है वो अक्सर ग्रे होते जा रहे हो, साथ ही साथ टाइम के साथ साथ उनकी शेप जो है स्क्वायर होती जा रही है। घर, गाड़ियां, मकान और दुकान और पान सब स्क्वायर हो रहे हैं, और मेरी जान ये जो स्क्वायर है लोग उसे ग्रे स्केल कर रहे हैं ताकि कोई दूसरे ऑफेंड ना हो। इंसानों का नेचर बदल रहा है, ह्यूमन टेंडेंसी चेंज हो रही है, अब लोग कलर नहीं बल्कि ग्रे स्केल के पीछे पड़े हैं। अब ग्रे स्केल से हटकर अगर हम कलर की बात करें तो रंगीन से भी संगीन गाना आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ। जी हाँ, स्कूल दी किताब इज फ्रॉम बोहेमिया, सीजन 5 कुक स्टूडियो, मणियानु गीत मेरे याद जिवें स्कूल दी किताब। और फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, रेडियो चुनाव से ढेर धड़काते रहो मेरे यार।

0: mere hjert jive skuld i kitab, kitab, kitab, kitab. Hun munde ya nu ki mere hyat jive school di kit.
1: Hi, main hu RJ Zeus.
2: Hello, main hu RJ Deeba.
3: Hi, main hu RJ Asra.
4: Hi, main hu RJ Sahil Muzaffar aur aap sun rahe hain Radio Chidar 90.4 FM, har dil ki dhadkan.
5: रेडियो चुनाव 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे. आज का कोट कहता है, इफ यू डोंट लूज होप यू कैन नॉट एंजॉय द विक्ट्रीज. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, मैं हूं जॉग ज़ीउस, मेरे यार सिटी हट धड़कन.

0: bunch of Zeus.
1: Kone ajo.
2: Zeus. Zeus. Zeus.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन हाय हाय रेडियो चनार मेरे यार नॉर्थ कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं मजदार शो व्हाट्सएप ऑन दी ऑन हर दिल की धड़कन रेडियो चनार 90.4 एफएम मैं हूं जॉक ज्यूस और वक्त हो चला कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए लेकिन टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपको याद दिला दूं आपको कि भैया हम जो है आपसे बार बार बताते रहे हैं कि आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाएं हमें बताएं क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनाने जी हाँ हमारे साथ साइमा जुड़ी है लिखती हैं साइमा सर बड़े टाइम से इंतजार कर रही थी आई फील गुड में मैसेज करूँ लेकिन फ्राइडे को ही बिजी हो गई सुन तो रही थी लेकिन टेक्स्ट टाइप नहीं कर पाई इस बार जरूर करूंगी और ट्यूसडे का वेट करूंगी सो दैट आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन आई फील गुड एनीवेज यू आर वेलकम साइमा थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए आज भी और ट्यूसडे को आप ही नहीं बल्कि हम भी आपकी टेक्स्ट का इंतजार करेंगे दोस्तों आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ 8899049904 इज द नंबर 8899900 व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर सर्च करें ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो वहां पर डीएम करके अभी आप शो में शामिल हो सकते हैं बस इस चीज का ख्याल रखिए कि शो के इन बिटवीन ही डीएम करना है और शो के बाद अगर आप डीएम करते हैं तो वो मैसेज जो है इंक्लूड नहीं की जाती रेडियो चुनाव 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन मजदार शो व्हाट्सएप और आज हम बात करने वाले हैं साउंड्स ऑफ इंडिया की जी हाँ इंडिया में जहाँ भी आप जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे गाएंगे खाएंगे पिएंगे कुछ ना कुछ एम्बियंस तो आपको सुनने को एक्सपीरियंस करने को मिल ही जाती है और वही अगर हम साउंड्स की बात करें तो डिफरेंट साउंड्स क्योंकि इंडिया में हर दिल धड़कता है और हर दिल को धड़काने के लिए देयर इज समथिंग गोइंग अराउंड और डिफरेंट टाइप्स के एम्बियंसेस जो हैं जाहिर सी बात है आपको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं जो कानों से होकर सीधा आपके दिल पर वार करते हैं कौन से ऐसे साउंड्स हैं जो आपको तरह तरह गली गली घर घर सुनने को मिलते हैं चाहे वो डिवोशंस हो फेथ हो या होप सब आपको जानने को मिलता है सब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है एंड यस इट्स अ फॉर्म ऑफ साउंड एवरीवेयर इन इंडिया साउंड्स ऑफ इंडिया आज का व्हाट्सएप शो का टॉपिक फिलहाल यहाँ पर एक गर्म चाय की प्याली वाला ट्रैक आप सभी सुनने वालों के लिए रेडियो चुनार की और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक ज्यूस मेरी जान से रहो धड़काते रहो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

के दर्कन रेडियो चुनाव 90.4 FM में हूँ जी। सब एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप साउंड्स ऑफ इंडिया। आज के लिए व्हाट्सएप शो का टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड हमें मैसेज की है इरफान ने। कहते हैं जब भी हम कश्मीर में या इंडिया में घूमते हैं कुछ ना कुछ अलग ही सुनने को मिलता है। सर मैं एक बार जंगल में जा रहा था तो ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जिससे हम डर गए। फिर जब गौर से सुना तो वो छोटे मोटे जानवर जो है उस एम्बियंस को ब्यूटीफुल बना रहे थे और उनकी जो आवाज़ें हैं उस एम्बियंस का चार्म बढ़ा रही थी। वेल, इन्होंने जगह का नाम लिखकर नहीं भेजा। इरफान मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिर से मैसेज करें और जगह का नाम लिखकर भेजें ताकि हम भी जान पाए कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये लुत्फंदोज़ आवाज़ें जो हैं सुनने को मिलती है। और जो दोस्त हमें सुन रहे हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं 8888-9049।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: bigger. Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
1: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 एफएम मार्टल के धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज ये हैं टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज जहां पर हम आप तक टेक अपडेट और साथ ही साथ पहुंचाएंगे आप तक बॉलीवुड से एक तड़कती फड़कती खबर भी आप जरा सा करें इंतजार देते रहें प्यार हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन मैं हूं चौकसी सिरे धड़काते रहो

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

सुनना मेरिया, आज सैटरडे है और अगली मुलाकात मंडे को होगी। जी हाँ, जा तो रहा हूँ मैं, लेकिन इस वादे के साथ कि मंडे को फिर से लौटूंगा। तब तक रेडियो चनार हमारा भरपूर साथ निभाता है। As we say, Team Radio Chinar and we love you all. कुछ ही देर में शो चनार बीट्स हंगामा और आरजे असरा आपसे जुड़ने वाली है। बने रहें, सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें। मैं हूँ जॉक ज्यूस और मुझसे बतियाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना वीकेंड जो है अच्छी तरह बिताए और सब में प्यार बांटते रहें। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन एंटिल वी मीट अगेन। कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मा सलामा।

कि हमारा जियारा डर नहीं रहा बल्कि पुकार रहा है ऐसी आवाज के चुनार बीट्स बीट्स ऑन रिपीट्स। आप सोच रहे होंगे आवाज क्यों डिफरेंट है। बिल्कुल है, क्योंकि मैं आरजे असरा हूँ और आज चिनार बीट्स और हंगामा दोनों ही साथ मिलकर मैं करूंगी। अब आप सोच रहे होंगे आपकी वन एंड ओनली आरजे दीपा कहाँ है। देखिए, हमारे और भी काम होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं हमारे, और वहाँ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो बनाने जा रही हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि बैक एंड पे कोई आप सबसे बात करें। अब मैंने सोचा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कैसे छोड़ दूँ। क्योंकि रेडियो चुनार हर दिल की धड़कन जो है, और 90.4 FM दिस इज द हॉटेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ कश्मीर, और कहीं ना कहीं किसी रीजन से होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और चुनार बीट्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दैट इज बीट्स ऑन रिपीट। मिल तो गए हैं पर अभी साथ अधूरा है। क्यों? क्योंकि आपको भी मिलना पड़ेगा। 8899904904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और बन सकते हैं इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा। मैं हूं अश्रा, सुनते रहिए शो चिनार बीट्स। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

beats with Archie Diva on Radio Channel 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज आज की ऐसी है बस कि अभी जो भी चल रहा है उसके बारे में बात होती है खबर ऑनलाइन में। यूजुअली तो आरजे दीवा इस टाइम पे होती हैं और वो बात करती हैं, पर आज मैं हूँ। और बट खबरें रुकनी नहीं चाहिए,
1: बदलेंगे ब्रेकिंग न्यूज में आज की।
0: और आज की खबर ये है इंटरनेट से कि जो सलमान खान की एक बहुत ही रिनाउंड मूवी है शादी करके फंस गया यार, एंड दैट इज एक्चुअली एपिटमी ऑफ कैसे हमें लड़का चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। जो कुछ भी सलमान खान ने उस कैरेक्टर में प्ले किया है वैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है बिल्कुल भी, ये इंटरनेट का कहना है और ये इंटरनेट की गर्ली पफ्स का कहना है।

खबर। यानी कि सलमान खान ने जैसे भी एक्ट किया इन द वे कि वो कैसे शिल्पा शेट्टी जो उनके साथ कास्टेड है एज अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, उन्हें कहते हैं कि तुम जॉब नहीं कर सकते, चाहे मतलब अपन उनके रूल्स पे जॉब कर सकते हो, तुम अपनी माँ को छोड़ दो पर मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। एंड मोर ओवर इतना मेलो ड्रामा है, और कहीं ना कहीं ये मेलो ड्रामा बहुत सारी लड़कियों की एक्चुअल लाइफ होता है। और वैसे ही इंटरनेट ने कहा कि कैसे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा अब।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज जे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM। रेडियो चनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात
0: चुप।
1: लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना
1: सा

0: सवरिया होय होय वो तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा तारा रा, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना हे याने याने याने प्यार हो गया।

0: अन्य प्यार हो गया।
1: ओ मनु तेरा हुआ

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

ने खेचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खेचा मैंने खेचा आ हा हा हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया बाजू।

0: बात यही है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।